0: लेंगे।
1: Tune into 98.1 FM Radio Eastern every Thursday 8 to 9 PM for Bollywood Radio program.
0: Hello, Zindagi.
2: ECG के जैसी उठती गिरती संभलती सी जिंदगी हेलो जिंदगी हेलो जिंदगी के सभी लिसनर्स को मेरा यानी रुचि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सुन रहे हैं रुचि को ह्यूमन स्टेइंग हैप्पी कीपिंग द होप अलाइव हू हा हो एंड दैट्स मी फ्रेंड्स आवर गेस्ट इन स्टूडियो टुनाइट इज अ मैन हु लिव्ड थ्रू 25 इयर्स ऑफ एनकी लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस फेस्ड पैरालिसिस हार्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड पार्शियल ब्लाइंडनेस येट chose not bitterness, but purpose of life. His life does not ask how strong are your muscles. His life asks how strong is your spirit when everything else hurts. So listeners, we will talk to Prashant BP after our third song. Prashant from 9 to 5 is a cybersecurity professional. And in the evening, 5 to 9, he's a coach for people fighting chronic pains. He's a certified ego skew pain and posture alignment specialist, an advanced pranic healer, e-hypnotherapist, meditation teacher, and mindset coach. And we will hear a lot about him from him in a short while. Filhal sunte hain hamari aaj ki shaam ka pehla gana.

Welcome back, listeners. We were talking, this is the time to talk straight from my heart. And you know that Hello Zindagi is a space where conversations are not just heard but are felt. So from our Hello Zindagi team, Eid Mubarak to all our wonderful listeners and their families. ईद का फेस्टिवल अपने साथ लेकर आता है खुशियाँ, वॉर्म्थ, फैमिली टाइम और बहुत सारी यमी यमी सेवियाँ. दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा सेहत, सुकून, मोहब्बत बरकरार रहें. और हाँ, अगर बच्चों को इस बार ईदी अभी तक नहीं मिली है तो सारे बड़े ज़रा अपनी पॉकेट को ढीली कर दें, डॉलर्स में आज दे दें थोड़ी सी ईदी बच्चों को. और एक और गाना सुन लेते हैं. देखिए, चांद सिफारिश का गाना तो आपने सुन ही लिया है. देखते हैं आज हमारे गेस्ट जो हैं स्टूडियो में प्रशांत, उनकी सेकंड चॉइस कौन सा गाना है.